0: 走西藏的话，在我走过路里面，我觉得这条路是最危险的。我把人家车撞了，您赔多少钱？
1: 我给的不是我的车子，是人家我借的。
0: 天路七色拐基本上都是180度大转弯，你就特别害怕，你就怕车子翻了。
2: वहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ है, रोड पूरा ब्रेक हुआ है, तो ये प्रायोरिटी पे इमल्शन और बिटुमिन। लेह का जो रोड है बहुत ही अल्टीमेट है, मनाली लेह हाईवे, ये वर्ल्ड में टॉप 10 डेंजरस रोड है, उसमें से एक है ये।
0: तो ये मेरे होता स्कूटी 发生交通事故死亡的货车司机肯定有，我对死亡的话没有恐惧感。
2: रोड आप देख सकते हैं कि कितना डेंजरस रोड है, तो एक भी मोड़ थोड़ा सा गलत काटा तो गाड़ी नीचे चला जाता है दरिया में पानी में।
3: जी काम कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं।
2: आई एम वरी अबाउट हिम, मेरा कंपेनियन है,

कर रहे हैं ले की तरफ। अभी हम दो ट्रक को लेके जा रहे हैं ले को, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है आपस में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा।

मनाली ले हाईवे, ये वर्ल्ड में टॉप 10 डेंजरस रोड है उसमें से एक है ये, और बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं इस रोड पे।

0: अभी हम लोग अटल टनल के अंदर हैं।
1: अटल टनल की स्पेशलिटी ये वर्ल्ड की हाईएस्ट अल्टीट्यूड और लॉन्गेस्ट टनल है। ये 9 किलोमीटर की टनल है और 3048 मीटर अल्टीट्यूड इसका सी लेवल से है।
0: इससे पहले अभी 3 साल होने को आए अटल टनल बनी, उससे पहले हमें रोहतांग से होकर आना पड़ता था और रोहतांग से आने में 6 घंटे एक्स्ट्रा लगता था। इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई उस कंडीशंस में रोहतांग टॉप को क्रॉस करना, वहाँ पे स्नोफॉल हो जाता था, आर्मी के ट्रक्स रुक जाते थे, प्राइवेट गाड़ियाँ हमारी रुक जाती थी और वहाँ पे बहुत से इंसिडेंट होते थे।

0: अभी इससे पहले जब रोड ठीक था तो हम ये वाला जो रूट है इसको बहुत जल्दी कवर करते थे। अभी क्या है कि दिन के टाइम जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड्स जो है बहुत जगह से टूट गया हुआ है।
1: आप नीचे देख सकते हैं कितना पत्थर है, ऊपर नीचे स्टोन्स एवरीवेयर। आगे भी है एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन पॉइंट, आगे भी है पर इतना बड़ा तो नहीं है, पर है वहाँ पे भी है। बहुत ज़बरदस्त है भाई, रोड की हालत बहुत ख़राब है। माय गॉड,

ये जो डिजास्टर आया इसके बाद की जगह जगह से रोड टूट गया हुआ है, पुराने वाला रोड तो चला गया हुआ है, नया रोड जो काटा हुआ है रोड तो बना दिया है उसको काट के, मगर उसमें लैंडस्लाइड्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इतना मुश्किल से गाड़ी निकल रहा है कि कोई बहुत ही मुश्किल है। सामान इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें आना पड़ रहा है, बिटुमिन लोड है क्योंकि रोड बनाने के लिए बिटुमिन चाहिए ही चाहिए वहाँ पर।

बचपन से ही हमारे ही मेरे ब्लड में ही है ये ट्रकिंग लाइन। तीसरी जनरेशन है मेरी, पहले मेरे दादाजी ने ये काम किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने किया। तो मैं रोड की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती थी जब मैं छोटा था, तो मैं एक दो बार अपने ड्राइवर्स के साथ गया सामान पहुंचाने के लिए, ऐसे ही बीच में घूमने के पर्पज़ से भी। तब बिना पैसे खर्च किए हुए नई नई जगह देखने को है,

0: हम अब पारलाचा टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं कि मनाली हाईवे में ये वाला जो टॉप है बहुत डेंजरस टॉप्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर कंडीशन जो है बिल्कुल चेंज होती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले वेदर कंडीशन बहुत अच्छी थी, अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी ये बारिश जो है इससे रोड और भी ज़्यादा डेंजरस होने की पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह नहीं है, लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाएगा।
1: क्या है, ट्रकिंग लाइन में बहुत से आदमियों की यहाँ पे डेथ हो गई है।
0: अभी हम लोग क्या है हाई अल्टीट्यूड की तरफ बहुत ज़्यादा चढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी को भी टेम्परेचर वगैरह चेक करना पड़ता है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो ओवर हीट होने के चांसेस है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम है। चढ़ाई भी ज़्यादा है, गाड़ी का इतना पावर भी ज़्यादा लग रहा है, हैवी लोड है तो गाड़ी की पावर उतनी ज़्यादा, गाड़ी को पुश करने के लिए उतना ज़्यादा जोर मांग रहा है, और जिसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, गाड़ी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है, इससे गाड़ी को भी बहुत मुश्किल आता है चढ़ाई में जाने के लिए।
1: एवरी ईयर ये रेशो है लगभग 20-25 पीपल्स जो हाई अल्टीट्यूड या इस वजह से जो डेप्थ होती है इस रोड पे, उस कंडीशंस में भी सांस फूलना शुरू होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई और ये हो गया।
0: ये देखो सामने यहाँ पे लिखा है 4850 मीटर इसका अल्टीट्यूड है सी लेवल से,

जब भी हम इस रोड से जाते हैं तो प्रे करते हैं, सभी के लिए प्रे की, सभी ट्रकर के लिए। कर ये जो मौसम की कंडीशन है, ये बहुत साल बाद इस बार हमें काम करना बहुत मुश्किल हो गया। ये लग रहा है कि ये सीज़न बहुत छोटा रहेगा, अभी विंटर स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगर सितंबर के बाद इस रोड पे चलना बहुत टफ हो जाएगा। तो इन सब के लिए सीज़न अच्छा सा गुजरे, सभी के लिए मैंने प्रे की, सभी ट्रकिंग लाइन का, सभी लोग अच्छे से गुजरें कि सभी कुछ अच्छे से हो जाए।

0: है हम लोग जो है अभी 22 लूप्स को 22 कैंची बोलते हैं, 22 मोड। एक तो ये लोड बहुत है, मतलब चढ़ाई है पूरा।
1: 22 मोड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी वो कैसे बिल्कुल डाउन से नदी साइड से शुरू होता है और कहाँ टॉप पे। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ऑक्सीजन की नीड जो है सिर्फ ड्राइवर्स को ही अकेले नहीं है, जो गाड़ी है हमारी उसको भी ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि कुछ भी जलाने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए तो ऑक्सीजन तो चाहिए। गाड़ी में लोड है, ऊपर से इतनी चढ़ाई है, तो गाड़ी में भी प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इस ओवरहीटिंग। अभी जो दूसरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर है वो माही है, वो मेरे पास लगभग 3 सालों से गाड़ी चला रहा है।
2: ये रोड के बारे में सबसे खतरनाक भाई जी, एक तो इसमें चढ़ाई बहुत है और ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी एक्सीलेटर रनिंग नहीं पकड़ती है, कई गाड़ियां जो है कि खड़ी हो जाती है चढ़ाइयों पे।
3: ये यहीं से 15-20 किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त था, तो वो ट्रक वो खाना बना रहे थे गाड़ी में बैठ के, पीछे से गाड़ी वाला आया, थोड़ा नींद में था और उसकी गाड़ी उसके पीछे डाले में जाके बजी और उनकी डेथ हो गई थी। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, कई बार मौत के मुंह से निकले हैं। ये जो लाइन ही ऐसी है, मशीनरी है।
0: हम लोगों ने बिटुमिन कैरी किया हुआ है, पीछे जो गाड़ी उसमें इमल्शन कैरी किया हुआ है, और दोनों का जो है ना लिक्विड टाइप में है, तो गाड़ी बहुत टिल्ट करता है 22 लूप्स में। ड्रम कभी भी नीचे गिर गया, एक दूसरे के ऊपर उलट पलट गया, तो गाड़ी को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। जिस साइड को वेट होगा हैवी लोड का, गाड़ी उसी साइड को जाएगी। आई एम वरी अबाउट हिम, मेरा कंपेनियन है।
4: हमारा गाड़ी भी प्रॉब्लम दे रहा है,

0: क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और गाड़ी मतलब कि स्टार्ट भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से। अगर गियर लगा के स्टार्ट ना करे तो गियर ना लगे।
1: तो गाड़ी बंद करके गियर लगाना पड़ता है और बंद करके वैसे ही गियर में सलप मारना पड़ता है तो गाड़ी वैसे ही चल पड़ती है, क्लच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इधर ना मैकेनिक है, फोन में सिग्नल भी नहीं है, मैकेनिक तो इधर आते नहीं है गाड़ी का काम करने, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है।
2: क्लच नहीं जी काम कर रहा है, ट्राई कर रहे हैं देख रहे हैं।
1: गियर लग नहीं रहे, एक बाजू में भी दर्द हो चुका है, अभी शरीर में ऐसा ये क्लच वाला पांव है इसमें भी दर्द हो चुका है।

और जहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ती है तो वहाँ पे उसको एक स्टोन लगा के धीरे धीरे मूव करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एक तो वो गाड़ी जब हाइट पे चढ़ रही होती है, नहीं चढ़ पाती है, अकेला ड्राइवर है, अगर वो ब्रेक मारता है, ब्रेक पे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं, पीछे को डाउन होती है, बैक में ब्रेक कम लगती है। जब गाड़ी रोड से बाहर निकलेगी खाली गाड़ी और इतनी हाइट से रोल करते हुए जाएगी, तो हमने बहुत सी मौतें इस रोड पर देखी हुई है।

जैसे भी हमने इस गाड़ी को मैनेज करके, क्योंकि ना मैकेनिक है ना कुछ है, हम लोग दोनों लगे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये तभी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों का आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है।

क्योंकि मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है, हिमालयस में ही, इसी रेंज में पला बड़ा। हिमालयस को पूजा करते हैं कि हमें यहाँ से, हम आपको क्रॉस कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो हमारी जर्नी है उसको ईजी बनाओ आप।

0: अब यहाँ से ले लगभग 40 किलोमीटर रह गया है। मैं और माही ने हमने मनाली से जर्नी स्टार्ट की थी और नॉन स्टॉप 450 किलोमीटर मनाली से ले है, दो दिन में इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया।
1: बहुत अच्छा जी, हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रास्ते में रुक जाती गाड़ी, शायद अगर हम थोड़ा सा भी मतलब कि हौसला ना करते कि गाड़ी पहुँचाने का।
2: अभी माही को वो अपने गंतव्य स्थान पे जहाँ पे उसने पहुँचना है, जहाँ पे उसकी गाड़ी अनलोड होनी है,

0: और सुबह जो है ना अनलोडिंग यहाँ पे आगे जो पेट्रोल पंप है करना।
1: चलो यहाँ पहुँच गए।
0: हाँ यही है, बड़ी बात है। चल ठीक है फिर, रखियो ध्यान में, ले मैं खाली करूँगा, तू यहाँ खाली कर। ठीक है फिर, बाय।

अभी अंधेरा होने को आ रहा है। पूरी वैली जो है उसको लद्दाख बोलते हैं। कैपिटल जो इसका है वो लेह है। लेह है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सारी मुश्किलों से पार पाते हुए फाइनली लेह में तो पहुंच गए। अभी ये जो गाड़ी है कहीं दूसरी जगह जाएगी अनलोड करने के लिए। वहाँ पे रोड अभी ठीक नहीं है, अभी 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। अनलोडिंग का अभी पूरा अच्छे से मालूम नहीं है। अभी सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि अभी फ़िलहाल अपना आराम से सोने का है, उसके बाद ही बाद में देखते हैं कि क्या करना है।

0: मेरे लद्दाखी फ्रेंड्स हैं, जब भी गाड़ी लेके हम ले आते हैं तो थोड़ा सा अनलोडिंग के लिए समय मिल जाता है, तो उस समय में मैं उनसे मिलता हूँ।
1: हाँ हाँ भाई,
0: 3 साल हो गए यार।
1: और क्या वाला है, कैसे आया हूँ इतना लंबे दिन के बाद?
0: बहुत मुश्किल से आया यार।
1: हाँ,
0: इतनी प्रॉब्लम हो गई नीचे, तेरे को पता ही है सब कुछ।
1: हाँ, वो सब तो सुना था।
0: बाढ़ आ गई। यसो को मैं ईयर 2000 से जानता हूँ। उस दौरान जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे वो उनके साथ वो पढ़ा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे उनके सर्कल में था, उस तरह से वो हम लोग आपस में मिले।
1: वहाँ बारिश ज्यादा हो गया इस साल, यहाँ यहाँ इतना नहीं हुआ।
0: यहाँ पे कैसा है इस बार?
1: हाँ, इतना नहीं है, थोड़ा ठीक ही रहा था।
0: ऐसा क्यों हो रहा है ये?
1: तो यहाँ पर ये है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर जगह पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा चेंज होने के बाद बर्फ़ कम गिर रहा है, अभी बारिश ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए इशू ज़्यादा है, क्योंकि बर्फ़ नहीं गिर रहा है तो ग्लेशियर नहीं बन रहा है। जो गांव में ग्लेशियर कम है उसमें पानी बहुत दिक्कत है। यहाँ कुछ कुछ गाँव में है कि कहीं पानी, पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता है स्टार्टिंग 2 मंथ्स के लिए।

0: लेह में लोगों को प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है पानी का। लेह जो बना हुआ है, लेह जो सिटी बनी हुई है, वो पुराने टाइम से उसी हिसाब से जितने कर लोग थे उसी हिसाब से बनी है। अभी क्या है, टूरिज़्म की वजह से यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है और दिन ब दिन जो होता है पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
1: अच्छा यार, अभी क्या लेके आया तुमने लोग?
0: अभी बिटुमिन लोड है, अभी उनका थोड़ा सा वहाँ पे उनके भी हाथ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद एक दो दिन में अनलोड हो जाएगी गाड़ी।
1: ऐसा कैसे चल रहा है?

0: morning commute. Cab surcharge? NERP? Even cafe breakfast too?
1: Save the day with Scrambled Egg Breakfast McSaver Meals at $5.95. Fluffy scrambled eggs with juicy sausage or chicken patty with a hash brown and hot coffee, all for just $5.95. Don't forget to try the new Scrambled Egg Burger with chicken bacon, back for a limited time. Skip the morning stress, savor the savings.
2: Singapore, you've heard of it.
3: But do you know it?
2: Next on Singapore Hour.
3: Snowboarding in sunny Singapore? Here's where you can hit the slopes.
4: If we cannot bring people out to experience it, can we bring the experience in?
2: And meet the Brit making Singapore her home, one laugh at a time.
5: There's no perfect place, but for me, like, Singapore is as near as it gets.
3: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
1: The Gardens by the Bay and Mediacorp National Day Concert 2026 is back to celebrate Singapore's 61st birthday. Look out for show-stopping performances by our finest talents and more. Take part in all the fun-filled activities and enjoy the vibrant fireworks that will illuminate the sky. Come together with your loved ones and celebrate our shared dreams for Singapore at the Gardens by the Bay and Mediacorp National Day Concert 2026, Sunday, 2nd of August from 4:30 p.m. at the Meadow Gardens by the Bay. Admission is free. For more details, visit mediacorp.sg/NDC. Brought to you by official payment partner Nets.
6: Vijay isn't cleaning his phone. He's trying to cool it down. Because without his phone, he can't work. And in Delhi's summer heat, the hotter it gets, the less he earns.
7: ये अपने आप स्क्रॉल होगा, अपने आप ऐप खुलते रहेंगे, अपने आप कॉल मिल जाएगा, कुछ भी हो जाता है सबसे. और ये करीबन जो जब तक ये कूलिंग नहीं आता, फोन कूल नहीं होता, बिल्कुल ठंडा नहीं होता, तब तक आधा घंटा लग जाए, एक घंटा लग जाए, वो अपना काम नहीं करेगा. और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कुछ काम ही नहीं कर सकते.
6: Temperatures in Delhi regularly hit above 40 degrees Celsius in the summer. But the overheating phone is only the first way the heat cuts into Vijay's earnings. When temperatures climb, business slows too.
7: एक तो फिर मैं राइडर को राइड नहीं मिलती हैं, कम राइड मिलती हैं, और राइड मिलती हैं तो उसमें क्या है, जो बैठ के जा रहा है गर्मी उसके लिए भी है, तो कंपनियां क्या करती है, प्राइस घटा देती है. मैंने एक कस्टमर अगर 10 किलोमीटर जा रहा है जहाँ 90 रुपये का चार्ज है, तो वो ये 70 रुपये में ले आते हैं, गर्मी है इसलिए.
6: When temperatures climb, he gets fewer passengers. And even when they book, Vijay says fares fall. The hotter the day, the less each trip pays. So during the hottest months, his income has plunged by almost 80%. And staying on the road comes at a cost.
7: देखिए, राइड चलाते समय जो टेम्परेचर ऐसा होता है, आप अब मैं एक अंदाज़ा क्या बताऊँ, जलती हुई भट्टी जैसे कहते हैं, लावा, लावा देखा होगा आपने. जो हम बाइक चलाते हैं ना, जिस हिसाब से गर्मी और लू चल रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हम लावे के अंदर घुस रहे हैं. अब मेरी फीलिंग को आप समझ लीजिए. और सबसे बड़ी बात है कि लंबा रूट मिल जाता है, जगह जगह हमारे बीच रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता, और जो हम पानी साथ में लेके जाते हैं वो भी इतना उबल जाता है, आप उससे हाथ नहीं धो सकते, पियेंगे क्या.
6: Even when his shift ends, there's little respite.
7: आप देखिए, हम 3 से 4 घंटे गर्मी में गाड़ी चलाते हैं. एक नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी होता है, वो 4 घंटे 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब घर आता है, अब नॉर्मल घरों में क्या होते हैं, पंखे. अब इतने टेम्परेचर में जब छत खोल रही होती है ना, तो पंखे कूलिंग नहीं देते, वो भी आग फेंकते हैं, ठीक है. अब वो 4-5 घंटे जॉब करने के बाद आता है और यहाँ रेस्ट करता है, तो वो चैन की नींद नहीं ले पाता.
6: So Vijay hasn't just changed how he works, he's changed when he works. He now avoids the hottest part of the day. But working fewer hours also means earning less. So this year, he made a bigger change. From 7 a.m. to 3 p.m, Vijay works as a security guard. When the temperature drops, he switches to ride hailing. The security job doesn't pay more. In fact, it's still outdoors. But unlike ride hailing,